0: certified health insurance specialist from Top Choice Insurance Agency.
1: Aap Punjabi aa gaye.
2: IPL चल रहा है only on Karo Stream. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
3: A1 केक्स एंड पेस्ट्रीज 1997 तो थोड़ी सेवा करदा आ रहा है. केक्स, पेस्ट्रीज, मठियाईयां, समोसे ते पार्टी डेकोरेशन भी ले सकते हो. नकल करके केक्स ते पेस्ट्रीज बेचण वालियां तो बचो ते जसपाल नागरा नु फोन करो.
4: A1 के तुम गालिए.
5: तुसी अपने फोन प्लान ते बहुत पैसे दे रहे हो. सेलुलर पॉइंट ते असी तुहाडे लई लेके आया बहुत ही वड्डी सेविंग्स. बेस्ट फोन प्लान ते बिना किसी शर्त तो. चाहे तुसी बिजनेस या फैमिली प्लान च सेविंग चाहुंदे हो. नो कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन या लेटेस्ट फोन चाहिदा सब तो बेस्ट कवरेज नाल. सेलुलर पॉइंट ते तुहानू सब कुछ मिलेगा. विजिट करो सेलुलर पॉइंट सेव टुडे. इट्स दैट इजी. अपनी नियरेस्ट लोकेशन cellularpoint.ca ते वेखो. सेलुलर पॉइंट, मोर फोन्स, मोर प्लान्स, मोर चॉइस.
6: लो जी चक्को फिर खुशखबरी. ब्रैम्पटन निवासियों लई खुशखबरी. हुण जदों भी तुसी

Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफील्ड रोड ब्रैम्पटन वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 Macwin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 9054569900
1: डॉक्टर कुमार लगे हुए नशे तो मुक्ति दवाने वास्ते शराब अफीम पोस्त डोडिया के नशे तो दूर कर देंगे डॉक्टर कुमार लेडीज़ दे मर्दों के गुप्त रोगों का इलाज डॉक्टर कुमार बुजुर्गों के मोढ़े गोडे दुखते हैं भाई डॉक्टर कुमार हर्बल वैगरा भी तुहानू वेद है डॉक्टर कुमार हर तरह के इलाज वास्ते डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ग्रेटर पंजाब प्लाजा माल्टन गुरु घर के कोल डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ते कॉल कर सकते हो
2: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM 530. Punjabi

0: महंगी है, ग्रोसरी महंगी है, गैस महंगी है, दे आर गोइंग थ्रू वेरी रफ टाइम। बहुत सारे लोग ने जिन्होंने बी लेंडर के नाल कराई हुई है जो प्राइवेट से एंड अप हुए हुए ने, दे वॉन्ट टू चेंज द टर्म्स फ्रॉम बी लेंडर टू ए लेंडर, जो प्राइवेट तो ए लेंडर से आना चाहते हैं, तो आप वी ऑलवेज कैन हेल्प दम ताकि उन्होंने थोड़ी जी पेमेंट जो सुखालियां हो जाए, टाइम जो सौखा आ जाए। मैनी अदर थिंग्स होंगे जिद तुम सोचते हो घर बैठ के उद ही अस्यूम कर लें कि यू नो वट चलो जो साड़ी ए तो नहीं हुई तो बी तो हो जूगी। जिड़ी ए का बी का फर्क है, इट्स अ बिग ह्यूज डिफरेंस। बी से जाना औखा है दैन ए नालों। ए इज थोड़ा 5% डाउन है, 10% डाउन है, 20 तो घट जिन्ना भी डाउन है, सिर्फ तुम ए लेंडर से ही जा सकते हो। जे 20% तो घट डाउन पेमेंट है, यू कैन नॉट गो टू बी लेंडर। बी लेंडर डू नॉट टेक यू अनलेस यू हैव 20% इन दी प्रॉपर्टी। तो ए लेंडर से जान वास्ते इट्स ईजी, 5-10% होया, छोटी जी अमाउंट है, फर्स्ट टाइम बायर हो, इट्स मच ईजियर। उधर जे तुम बी साइड से जाना, हाँ अनलेस थोड़ा क्रेडिट स्कोर खराब है, इट्स एन अ डिफरेंट इशू, बट वह तो लैंडिंग फी लग जाती है, ब्रोकर फी लगती है, उनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे। बट यस, जे कि नहीं होंगी पी तो दैन तुम बी का सोच लो कि चलो ए तो नहीं हुई तो करके बी ते जाना। अदर दैन दैट यू शुडंट थिंक घर बैठ के कि चलो जे ए तो बी ते हो जाए, बी दे देयर आर मोर एक्सपेंसिव। बाकी थोनू किसी भी तरह की पैसे ढिले की जरूरत हैगी है, एक्विटी कढ़ानी है
1: जी,
0: किन्ने भी थोड़े को क्रेडिट कार्ड ने सारे भरे हुए हैं, करके क्रेडिट स्कोर यूटिलाइजेशन पिछे थले जाता पाया, तो वी कैन कंसोलिडेट ऑल योर डेट्स एंड मर्ज इनटू वन मॉर्गेज मंथली पेमेंट
1: जी।
0: मॉर्गेज ब्रोकर, मॉर्गेज क्वीन, मॉर्गेज अलायंस, नीलम सराव, 6477398710। पहली मॉर्गेज है, सैकेंड मॉर्गेज है, प्राइवेट फंड चाहिए ने, 12 बजे तुम पता लगा कि अज ना हो गई पर शामी चाबियां चाहिए। कोई नाम है जी?
1: नीलम।
0: 6477398710।
1: बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी। सो बिल्कुल जी, नीलम जी दे नाल तुसी मोर्गेज संबंधी कोई भी जानकारी लेनी है क्या? बिल्कुल, जिदा जानकारी उन्होंने तुम दसी कि तुसी मोर्गेज जिहड़ी जी मंथली पेमेंट्स मिस्ड हो चुकी है, तुहाडियां क्रेडिट कार्ड टैप्स है वो सारे नु जिहड़ा जी कंसोलिडेट करके एक पेमेंट दे विच जिहड़ा जी करके दे सकदे आ। गलबात करन लई 6477398710 ते गलबात जिहड़ी जी उन्हां दे नाल हो सकदी आ। ग्रैंड फर्नीचर दा एक वारी फिर मैसेज दईए, ग्रैंड फर्नीचर जिहड़ा जी बहुत सारे जिहड़ा जी इस टाइम डिस्काउंटेड ऑफर्स ते तुहानू जिहड़ा जी घरां दा समान मिल सकदा हैगा। गलबात करन लई नंबर 9053029494 ते जिहड़ी है जी गलबात तुसी इन्हां दे नाल कर सकदे आ।
2: एवरेस्ट ट्रांसपोर्टेशन हायर कर रहे ने क्रॉस बॉर्डर एसी ड्राइवर्स, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी, डेडिकेटेड ऑटो पार्ट्स, डेली होम रन्स, सेम ट्रक ते ट्रेलर्स, लगभग 3000 माइल पर वीक मिलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम कुशावा, इटोविको अते बॉल्टन। जे तुहाडे कोल भी है वैलिड एसी लाइसेंस, क्लीन CVOR ते एब्स्ट्रैक्ट, US बॉर्डर एलिजिबिलिटी ते फास्ट कार्ड, ता आज ही एवरेस्ट ट्रांसपोर्टेशन नु कॉल करो 9058462229 एक्सटेंशन है 4 या फिर 9053348222 यानी 905-846-2229 ते या फिर कॉल करो 905-334-82 एक्सटेंशन है 4।
3: Are you ready? टिक्का जंक्शन ले 6474294040 केटरिंग करानी है छोटी बड़े फंक्शन ले नो प्रॉब्लम 6474294040 लाइव कुकिंग करानी है करे नो प्रॉब्लम 6474294040 तुसी इन्हां दे बैंकट हॉल या लॉज में छोटी बड़ी पार्टी करनी है नो प्रॉब्लम 6474294040 647-429-4040।
4: ना चाचा जी, आह 3 महीने हो गए थोनू मोड़गे ते कागज इकट्ठे करदिया नू, हुण थई तुहाडी मोड़गेज अप्रूव नहीं हुई है।
5: ओ तू रे फड़ा, ओ मोड़गेज अप्रूव करानी पता किन्ना औखा काम है, 100 पापड़ बेलने पैंदे आ, लग्गिया गल्ला मारदा।
4: ओ चाचा जी, मैं तां पहलां ही कहा सी भाई फर्स्ट या सेकंड मोड़गेज दी लोड़ होवे, रीफाइनेंसिंग दी लोड़ होवे, ट्रक लोन या इक्विपमेंट लोन चाहीदा होवे, बिजनेस लोन या प्राइवेट लैंडिंग दी ही लोड़ क्यों ना होवे, तां सुन दे मेरी गल, जे सारे पास्यो हो गई ना तां बांह फड़ू कमलजीत सरा 416-356-1870 416-356-1870 456-1870

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड टोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1150 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca.
4: Kataria Tours and Travels, located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection Upper. To see cheap flight tickets, si pal de vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options suno chahide ne. Jan to see visa services, si pal de vecho, puri family vacation Upper jaan di soch ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna maji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection Upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection of
5: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
5: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
7: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया। आटा दाल चावल नाले सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566 नोबेल फ्रेश फूड।
8: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
9: विमला विलेज ला विलेज पढ़ दे पीओ च जंट पढ़ दा विमला विलेज ला विलेज विमला विलेज ला विलेज पढ़ दे। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल, ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निजर जी दे नाल।

0: बिल्कुल जी, एक बार सारे साडे लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत है जी, और उम्मीद करते हैं कि साडे सारे लिसनर्स बहुत वधिया होंगे जिथों भी तुसी सानू सुन रहे, भावें गड्डियां चो कारां चो या कम्मां कारां तो साडे वालों सारे नू प्यार भरे और निघी सति श्री अकाल जी। और बिल्कुल जी, जिथे कि अज हो चुका है ट्यूजडे, जिथे कि आप हफ्ते के दूजे दिन च आ गए, उत्थे देखो जी महीने के भी जिहड़ा जी आप दूजी तरीक दूजे दिन ते आ चुके हैं। और उम्मीद करा कि जून का महीना सारे का जिहड़ा जी वधिया रहे, चढ़दी कला दे विच रहे, इस चीज की ही आद असी रखते हैं। और नाल दी नाल जिहड़ा जी असी ऑलवेज कहने हुंदे आ स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिविटी दे विच ही जिहड़ा जी रहना चाहिदा आ, क्योंकि स्ट्रेस तो ऑलरेडी दुनिया ते बहुत आ, तां करके असी एक घंटे का जिहड़ा जी रेडियो प्रोग्राम असी हमेशा हास्य मजाक वाला जिहड़ा जी करदे हुंदे, सानूं इदां हुंदा कि ठीक है जी थोड़ा जिहा मनोरंजन साडे लिसनर्स दा वी जिहड़ा जी करदी है। सो अज जिथे असीं तुहाडी मनप्रीत दे नाल गलबात जलंधर स्टूडियो तो करावांगे, इत्थे वी जिहड़े जी स्पॉन्सर्स दे मैसेजेस तुहाडे तक सांझे करदे रहांगे, और कुछ गीत संगीत नाल दी नाल तिया दे मेले दा जिहड़ा जी मैसेज सांझा करांगे। सो वैदर रिपोर्ट सांझी करदे होए मैं दसदा कि अज दा वैदर हैगा 24 डिग्री, शाम नूं हैगा जी 19 डिग्री, ओवरनाइट हैगा 14 डिग्री, और हवा की स्पीड 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे नाल, ते एयर क्वालिटी हैगी जी 2, जिथे कि अज जिहड़ा जी दिन चढ़िया सी 5:40, ते दिन जिहड़ा जी छिप जाणा है 8:54 PM ते। सो यह हैगी है जी वैदर रिपोर्ट, ते नाल दी नाल जिहड़ा है जी स्पॉन्सर्स दे मैसेजेस तो पहला मैं दस दवां कि तियां दा मेला जिहड़ा है जी इस साल दा जिहड़ा जी पहुंच चुकिया हैगा 21 जून नूं पीयरसन कन्वेंशन सेंटर दे विच, इस साल दा जिहड़ा जी यह हैगा 24वें साल का जी, 23 साल पिछले साल जिहड़े जी तियां दे मेले नूं पूरे हो गए आ। और बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडे सारयां दा, इन्ना जिहड़ा जी तुसीं प्यार सतिकार तियां दे मेले नूं दिंदे रहिंदे आ। पीयरसन कन्वेंशन सेंटर बहुत सारे जिहड़े जी देखो आर्टिस्ट उत्थे परफॉर्म करन लई पहुंच रहे आ, एडवांस टिकट बुकिंग जिहड़ी जी स्टार्ट हो चुकी है, तो तुसीं टिकट जिहड़े जी मेगा स्टार इवेंट्स .com तो जिहड़े जी लै सकदे आ। सिंगर्स असी जिहड़े जी पिछले हफ्ते भी अनाउंस किए सी, इस हफ्ते भी असी जिहड़े जी 1 तो 2 सिंगर तुहाडे जिहड़े जी अनाउंस कर देवांगे। देखो वेंडर्स रिलेटेड कोई भी इनक्वायरी ले करनी है, या तुसी इस शो दा बनना चाहुंदे आ स्पॉन्सर या प्राउड स्पॉन्सर, कॉल करो 9057990999। और मेरा साथ स्टूडियो दे विच दे रहे सुखी जी, सुखी जी बहुत बहुत स्वागत है।
1: बिल्कुल किरण जी, बहुत वधिया जी, सारे मैं लगदा ठीक ठाक होणगे, और बाहर दा मौसम भी बड़ा अच्छा आ, क्योंकि मौसम जदो गर्मी आउंदी इवें ही ना काफी कुछ बाहर निकल के आउंदा, इत्थे एक मिंटां च घा देखो कटण वाला हो जांदा
0: जी जी,
1: और लोगों ने गार्डनिंग की थी घर के पिछे, और इदी काफी मेले भी होने लग पे, शो भी होने लग पे, तो इस साल भी अपना मौसम के हिसाब ना तुसी भी जिहड़ा लेट प्रोग्राम रख दी तियां दा, पहला मदर्स डे ते हुंदा सी तां फादर डे, और फादर डे ते है कि फादर नूं गिफ्ट है कि तुसी उस दिन नूं ना अपनी पार्टी करो, यारां दोस्तां नाल इकट्ठे होवो घरां च,
0: हां जी,
1: ते जे बच्चे भी नाल खिलाओ, जे किसी ने बच्चों नूं बीच वगैरह लेके जाना बाहर घूमना ते बाहर लेके जाओ, ते लेडीज आउण सारियां तियां ते पीयरसन कन्वेंशन सेंटर दे विच। और दस दिए कि स्टॉल जिहड़े लिमिटेड जिहे रह गए ने, ते नंबर इक्को ही है 9057990999 ते तुसी गल कर सकदे हो, ते एडवांस दे विच जिहड़ी टिकट है वह ऑनलाइन ओपन है, और जिहड़ी एडवांस टिकट है वह $30 दी तुहानूं मिल रही है इस टाइम। ये केड़ा मेगा इवेंट
0: megastarevents.com
1: ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨ ਜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ .com, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਜ ਏ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਵੈਂਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕੋ ਹੀ 9057990999 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਧੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 1:11 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਲਓ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਚਨਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 4 bedroom ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ, 2 bedroom ਦੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸੋਰੀ 2 bedroom ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਘਰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ $7,50,000 ਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। 4 bedroom ਦਾ ਘਰ, 2 bedroom ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ $7,50,000 ਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, 8817070 416-881-7070 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਅੱਜ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਹਿਣ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਗਾਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਗੀਤ ਤੋਂ ਕਰੀਏ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੀਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਨਤ ਨੂਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੰਨਤ ਨੂਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ।
1: ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣੇ ਜਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਹੋਏ
0: ਜੀ।
1: ਸੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।

0: किट्स प्रोवाइड करते हैं। ओनली इंटरनेट दी भी स्पेशल प्रमोशन है 500, 1500 और 2000 दी स्पीड वाले रॉजर्स इंटरनेट
1: 2000
0: चीप प्राइस पर दिला देंगे।
1: वाह वाह, 2000 दी स्पीड वाले होता है, मैं पटक ही पौंदा जांदा हूं। जी जी
0: जी, रॉजर सेल फोन दी भी बहुत अमेजिंग ऑफर है मेरे को। कैनेडा यूएस अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, आईफोन और सैमसंग भी स्पेशल प्राइस पर अवेलेबल है। प्लीज कॉल फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, नंबर है 6478648000, 6478648000। असी 18 साल से रॉजर्स दे कॉर्पोरेट इम्प्लॉय हैं, थोड़ा अकाउंट और एड्रेस चेक करके बहुत बढ़िया प्रमोशन दिला देंगे। नंबर अगेन 6478648000, 6478648000।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब, चाहे रॉजर की कोई डील लेनी है भाई
2: जी,
1: चाहे इंटरनेट लेना, चाहे फोन की डील लेनी है, तो वकार खान साहब एक नाम है, एक ब्रांड बन चुका हूं तो खान साहब का। सो खान साहब एक बार नंबर फिर साझा कर दियो।
0: नंबर है सर 6478648000, 6478648000।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच,
0: थैंक यू सो मच राजवीर जी,
1: थैंक यू जी, थैंक यू। चलते हैं आप अगली कॉल पे। सत श्री अकाल जी। हाँ जी भाई जी, सत श्री अकाल। सारी जिंदगी नहीं पता लगे भूआ भतीजी क्यों लड़िया, भी तुम लेना की
3: आलू बड़िया डोलतिया
1: भूआ भतीजी
2: बोलतिया।
1: बहुत धन्यवाद भैन जी, थैंक यू, थैंक यू जी। अगली कॉल, हेलो सत श्री अकाल जी, हेलो हेलो, थोड़ी आवाज नहीं जी आई है। अवतार कौर जी सत श्री अकाल। चलो धरती बंदा खा लो है सब्जी बन गई,
2: जो बन गया खान,
1: हाँ भूआ भतीजी क्यों लड़ी है। सो चलो उन्होंने एक बाद भी दस दी, मेरे मेरा लगा भूआ भतीजी भी बोल पी,
2: हाँ आलू बड़िया डोलतिया
3: कितने
2: ना कि कोई ना कुछ सच्चाई तो होंगी, जे कोई भी चीज बन गई
3: बोली बनी
1: है, सच्ची कोई बोली याद आंदी भैन जी तुहानू, कोई सस दे उत्ते बोली कोई भी?
3: नोट
1: कर ली थी चीज, 100% मैं नोट कर लेना, जगजीत जी नोट कर लो,
2: बिल्कुल
1: मैं पवा देना भाई उन्होंने,
2: बिल्कुल
1: थैंक यू भैन, थैंक यू, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हक मारना नहीं भाई जी चाहिए
2: जी, बिल्कुल
1: हक पराया नानका उस सुअर उस गाय
2: जी,
1: जरा हक ये किसी का तुम ना कहते कि मेहनत की हुई दा ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ,
2: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ
2: ਪਹਿਲਾਂ, ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
1: ਦਵਾਵਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ,
2: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ,
1: ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਤੇ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ $40-50,000
2: ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ,
1: $100-150 ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ,
2: $200 ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ
1: ਹੱਕ ਤਾਂ, ਜਿੱਦਰ ਸਾਡੇ ਐਡ ਦਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ फेशियल कर देंगे, आ कर देंगे, आ कर देंगे, आपका फेशियल होने वाला
2: है,
1: चमका देंगे, भाई बिजनेस चमकाओ पहला, जिन्हें पैसे देने वाले उन्होंने पैसे दो
2: जी।
1: सो कई ने यार, कई है जिहड़े हौली हौली आपां करांगे
2: ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ
1: ਬਾਬਾ ਵਕਤੌਰਾ ਗੋਲ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਰ
2: ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ।
1: ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ?
4: ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਤ ਸਹੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਲੈਤੇ ਹੈ ਫੀਸ ਕਾਮ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਜੋ 199-499 ਹਮਾਰੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਹਮ ਕਾਮ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਲੈਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੇ ਤੋ ਇੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟ ਕਲਾਇੰਟ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਂ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਹਮਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਂ ਤੋ ਕੁਛ ਆਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1: ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਨਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈਆਂ ਦਾ, ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮਾਲ।

0: 32, 55, 80
1: 98
0: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
1: काउंटिंग नहीं ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
2: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते
1: 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 Bowway Drive नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828
3: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
4: Radio Desh Pradesh.
5: For advertisements and information,
6: Sade head office nu call karo 416-725-2551 416-725-2551
4: There is but one God. The Supreme Truth.
7: Karta Purakh.
4: The Creator.
7: Nirupan.
4: Without fear.
7: Nirvair.
4: Without hate.
7: Akal Murat.
4: Omnipresent. Shall worship the eternal truth.

0: लाइक फंडिंग भी हासिल करो, स्किल भी हासिल करो, कोई कैच नहीं है जी इसमें। पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन आपका स्टेटस होना चाहिए, एंड अगर आपकी इनकम 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट में लेस देन $70,000 है तो ही आपको इसका बेनिफिट है सिर्फ। तो हमें हाई इनकम क्लाइंट्स नहीं चाहिए, उनको फायदा नहीं है। अगर आपकी इनकम कम है, सेल्फ एम्प्लॉयड, ऊबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, नो एज लिमिट 40-50 साल आपकी, नो डिस्क्रिमिनेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसी एज पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। हमारे क्लाइंट्स की एज 75 ईयर्स भी है, पेंशन भी है, और इनकम जितनी कम उतना फायदा, फैमिली साइज जितना ज्यादा, नंबर ऑफ किड्स जितना ज्यादा, बच्चे ज्यादा है तो ज्यादा फायदा। फंडिंग आपके अकाउंट में आती, मेरे अकाउंट में नहीं आती, 2-3 घंटे आपने देने, पूरा दिन नहीं लगाना होता, और मीठी मीठी बातें हम नहीं करते, एयर पे ठोक के फीस बताते हैं। 199 से 499 फीस है, नो परसेंटेज, नो कमीशन, नो कैच, गवर्नमेंट लाइक गवर्नमेंट के कागज गवर्नमेंट को सबमिट हो रहे, बैंक को सबमिट नहीं हो रहे, तो कोई अप्रोच, कोई सेटिंग नहीं होती इस काम में, सारा ट्रांसपेरेंट काम है। ऑफिस है हमारे 218 एक्सपर्ट बुलेवर्ड पे, हर एंड डेयरी पे, अभी भी आप आ सकते हैं। नंबर नोट कर लें आप, 437-264-31-75, 437-264-31-75, 437-264-3175, यूनिग्लोबल एडवाइजरी नंबर अगेन, 437-264-31-75।
1: शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों जी ग्रांट मिलती है 50,000 रुपया जो मिलता है गौरमेंट लै के पाओ जी अपने जेब च, है ना, छड़ने कहूँ हाँ, फिर अगस्त च बंद हो जानी है, कल लोन नहीं मिलेगा। तो नंबर एक बार फिर नागपाल साहब का 437-264-3175 टैलीफोन नंबर है। लो हॉडवेयर कहते ही ड्यूट कोई गल लगाया नहीं, अज है ना, लो जी आ